0: जिसको बोलते हैं कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा करे, हर एक जो सुविधा हो जो किस तरीके से इसको कंड्यूसिव बनाना है ताकि प्रोसेस पूरा पेपर बने और अंत तक जो है वो उसमें जो जो भी होल्स पॉसिबल है उनको बंद किया जाए। और उसके अलावा एक जो सामाजिक स्तर की भी जो बात करते हैं भाई आप, ये है कि कई बार हम गलत काम करने के लिए जैसा माथुर साहब ने बताया सजा से नहीं डरते बल्कि हम इस चीज से ज्यादा डरते हैं कि अगर हमारे बच्चों को पता चला यार मैंने ऐसा किया तो यार वो क्या सोचेंगे,
1: सामाजिक
0: तो सामाजिक दबाव भी होता है। तो चलिए जटिल विषय है श्रोताओं, और हमारे श्रोताओं में भी ज्ञानी शिक्षित सब सारे ऑडियंस है, तो आप लोग भी बताइए कि इस आप अगर कुछ इसमें फीडबैक देना चाहें तो हमको ग्रुप पर दीजिए और हम निश्चय ही साझा करना चाहेंगे ताकि और लोगों तक आपकी बात पहुँचे और इसको कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और हम अपने संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं, तो संजीव जी एक और फिल्म फेयर वाला गाना जो है श्रोताओं को सुनाते हैं।
2: चलिए

0: love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्ता।
2: एक ट्रेन जिसे चलने के लिए ना बिजली चाहिए, ना कोयला और ना ही डीजल, तो क्या ये जादू से चलती है? अरे नहीं, ये हाइड्रोजन ट्रेन है, माने हाइड्रोजन इसका ईंधन है। और ये हरियाणा के जींद स्टेशन से सोनीपत, जो 89 किलोमीटर का रूट है, उस पर चलेगी। पर हाइड्रोजन से चलेगी कैसे, ये समझते हैं भास्कर एक्सप्लेनर में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ख्याल ना पूरा होता अगर 250 साल पहले लंदन की लैब में एक एक्सपेरिमेंट ना होता। साल था 1776। साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने जिंक मेटल को तेजाब में डाला, बर्तन से बुलबुले उठे, एक रंगहीन गैस निकली, आग की लौ दिखाई तो हल्की भम की आवाज के साथ पानी की बूंदे बनी। यहीं से राज खुला, पानी दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साल 1800 में दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने पानी में बिजली का करंट दौड़ाकर उसे वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आज दुनिया इसी तरीके से हाइड्रोजन बनाती है। अब बारी थी एक बड़े सवाल की, क्या हाइड्रोजन गैस का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? 1838 में एक केमिस्ट ने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ मिलाने पर सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली भी पैदा होती है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक और जज विलियम ग्रोव ने इसी सिद्धांत पर एक मशीन बनाई, गैस बैटरी, माने दुनिया का पहला फ्यूल सेल। फिर आया 1937, हाइड्रोजन से भरा हिंडनबर्ग एयरशिप अमेरिका के लेकहर्स्ट में लैंड करते वक्त आग का गोला बन गया, 36 लोग मारे गए। क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है और मामूली सी चिंगारी मिलने पर विस्फोट हो सकता है, इसलिए इस हादसे के बाद हाइड्रोजन को खतरनाक कहा जाने लगा। असली मोड़ आया 1973 में, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने अचानक तेल की सप्लाई रोक दी तो दुनिया ने तेल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को देखना शुरू किया। 2018 में जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन उतार दी। जापान, चीन और अमेरिका ने भी हाइड्रोजन ट्रेनें लॉन्च की हैं। भारत में शुरू हो रही हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी की शुरुआती हाइड्रोजन ट्रेन से करीब 5 गुना लंबी है। आगे चलकर देश में हाइड्रोजन फ्यूल पर कई हेरिटेज ट्रेनें चलाने की भी तैयारी है। लेकिन हाइड्रोजन काम कैसे करता है? हाइड्रोजन सबसे हल्का और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कभी अकेले नहीं मिलता। दो एलिमेंट्स तो हमेशा साथ होते हैं, माने H2 मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है पानी, यानी H2O। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इसी पानी से शुद्ध हाइड्रोजन वापस निकाली जाती है। अब इस हाइड्रोजन से एनर्जी निकालने के लिए फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है। फ्यूल सेल एक खास तरह की बैटरी है जो हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है। बाहर निकलता है सिर्फ गर्मी और पानी की भाप, न धुआं न कार्बन, इसीलिए इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है। ट्रेन में पुराने डीजल इंजन की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया गया है, जिसमें फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्ट करेगा, जिससे बिजली बनकर बैटरी में स्टोर होगी और फिर ट्रेन इसी पावर से चलेगी। हालांकि हाइड्रोजन को स्टोर करना आसान नहीं है, इसे सामान्य हवा से 200 से 500 गुना ज्यादा दबाव पर रखना पड़ता है। इसीलिए जींद में खास फ्यूलिंग फैसिलिटी बनाई गई है, जो एक बार में 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर कर सकती है। साथ में चिलर प्लांट भी लगाया गया है, जो हाइड्रोजन को -15 डिग्री पर ठंडा रखता है, ताकि ये तरल रूप ले और भरना आसान हो। हाइड्रोजन ट्रेन की क्रांति दुनिया में अभी नई है। जर्मनी ने 2018 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई, लेकिन 2024 के आखिर में ज्यादातर ट्रेनें हटाने लगा, क्योंकि इनकी तुलना में बैटरी ट्रेनें सस्ती साबित हो रही हैं। जापान भी इसे अभी तक बड़े पैमाने पर नहीं उतार पाया। चीन और अमेरिका में भी सिर्फ छोटी दूरी तक ही हाइड्रोजन ट्रेनें सीमित हैं। लेकिन भारत के लिए इसकी एक खास अहमियत है। कालका शिमला जैसे पहाड़ी रूट जहां बिजली के लाइन खींचना मुश्किल है और डीजल का धुआं आज भी बड़ी चिंता है, वहां हाइड्रोजन ट्रेन परफेक्ट हो सकती है।
3: तो दोस्तों, ये एक पिछले दिनों आप समाचारों में सुना होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन जो था वो हरियाणा में चलाई गई है, करीबन 100 किलोमीटर के रूट पर है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन और देशों में भी है, लेकिन भारत की ये जो ट्रेन है ये सबसे नंबर ऑफ़ कैरिजेस इसके सबसे ज़्यादा हैं और काफ़ी इंजन की पावर के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा इंजन इसका है और जिसको एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में ऊर्जा अपने आप में एक समस्या है और उसके अलावा जो है वो आपका प्रदूषण जो है वो दूसरी समस्या होती है कि पेट्रोल है या किसी भी हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे कार्बन और उसके उत्सर्जन होते हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक हैं। हाइड्रोजन को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं है। और यह विषय मैं आज विशेष रूप से आज स्टूडियो में इसलिए भी लाया क्योंकि एक फिजिसिस्ट, जैसा मैंने परिचय के आरंभ में बताया था कि माथुर साहब जो है वो एक लंबे समय तक का शिक्षा फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने इतनी रिसर्च की है, इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो और यह जो है वो उनके क्षेत्र का विषय है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस समस्या, क्या इससे हमारी ऊर्जा की और पर्यावरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है?
4: मैं कुछ बात एक राइट पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, मैं बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स करता हूं, तो ये मेरा विषय वैसे नहीं है, लेकिन मैंने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर। बात ये है कि सब में बड़ी प्रॉब्लम जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल वगैरह, इनमें कार्बन का है और कार्बन के जाने से, एटमॉस्फेयर में जाने से टेम्परेचर राइज हो रहा है और उसके असर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सब में बड़ी प्रॉब्लम हर कंट्री के लिए ये है कि वो कार्बन मुक्त वातावरण पैदा करे और ऐसे ही फ्यूल्स का इस्तेमाल करे। ये जो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो अभी व्यवस्था शुरू की गई है ट्रेन की, ये इंडिया के प्रस्पेक्टिव में शॉर्ट डिस्टेंस चलने के लिए है। इसका कोई रोल हज़ारों किलोमीटर के लिए नहीं है। असल में है क्या कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है और वहां अब भी डीजल की ट्रेन के से चला जाता है, जैसे जिंद में अभी ये चलाई है, ये सिर्फ 150-200 किलोमीटर का वो है। तो उन छोटे सेक्शंस को इससे फीट करने की ज़रूरत है, तो ये कोई बहुत बड़े उसके लिए नहीं है। जो लोग अब इसमें जो हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह है कि वो हाइड्रोजन जिसके उत्पादन में किसी भी प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन ना हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। तो इसके लिए जो हाइड्रोजन बनाई जाती है वो शुद्ध पानी को लेके उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाई जाती है, कहीं कार्बन वार्बन उसमें नहीं होता, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन गैस के फ्यूल से हम इसको ट्रेन को चलाते हैं। इस ग्रीन, ये किसी भी हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के संग जला के कंबस्टन कर सकते हैं और उससे इंजन बना सकते हैं, लेकिन ये वैसा इंजन नहीं है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, बैटरीज हैं, ये हाइड्रोजन से चलने वाली। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, वेट कैरिंग कैपेसिटी। आप ये सोचें कि अगर एक ट्रेन उन बैटरियों से चले, बहुत सारी बड़ी बड़ी बैटरियां लगा दें और उससे चलाएं, तो बैटरी का वज़न ही इतना हो जाएगा कि ट्रेन में ले जाने के लिए फिर आपके पास लोड नहीं बचेगा। हाइड्रोजन सब में हल्का तत्व है और हाई प्रेशर पे, यानी आपको अगर मैं ये बताऊं कि जो 10 डिब्बों की ट्रेन चलाई गई है, इसमें सिर्फ 2 डिब्बे हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल है, अदरवाइज और कहीं 6 डिब्बे जो हैं वो आप बैठने के लिए हैं। तो एक पैरामीटर कहलाता है एनर्जी टू वेट रेशो, वो इसका बहुत पॉजिटिव है। ये 1 किलो हाइड्रोजन से आप बहुत एनर्जी गेन कर सकते हैं, मेगावाट के ऑर्डर की एनर्जी गेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कंबस्टन नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन को एक कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है जिससे वो मॉलिकुलर फॉर्म में हो जाती है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाती है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उससे प्रोटॉन अलग चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है करंट, तो वो इलेक्ट्रॉन की करंट इस्तेमाल की जाती है इंजन ड्राइव करने में, और ये जो प्रोटॉन चला गया ये फिर दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आती है उससे मिलकर वाटर बना देता, तो फिर आपके पास मोटर आ जाता है। तो ये फ्यूल सेल से चलती है और इसमें कहीं भी किसी फॉर्म में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। बड़ा एडवांटेज ये है कि वेट आप इसमें फ्यूल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा वेट ले जा सकते हैं।
3: तो ये कुल मिला के आमजन की भाषा में, जैसे आपने आरंभ में बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस करके जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर लेते हैं, उसका रिवर्स यहाँ पे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो बिजली बना ली हमने थोड़ा सा।
4: नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के नहीं कर रहे, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं।
3: अच्छा,
4: अभी ऑक्सीजन नहीं मिलाई जा रही और बिजली बन गई है ऑलरेडी, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बिजली बन गई। अब आप पानी बनाने के लिए उस जो बचा हुआ प्रोटॉन है उसे कंज्यूम करने के लिए वाटर,
3: तकनीकी रूप से थोड़ा सा फर्क है। तो नहीं, चलिए, तो ये तो एक अच्छा समाधान हुआ। लेकिन अभी आपने बताया, जैसे आप कह रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स है, देखिए कुल मिला के स्रोत जो हमने किया था, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन बनाई थी, भाई बिजली थी हम पे इसलिए हमने हाइड्रोजन बना ली और जिससे हम फिर वापस ऊर्जा ले रहे हैं। तो बात घूम के जो है ऊर्जा पर ही आ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो एक न्यूक्लियर जो ऊर्जा है उसको एक अच्छे विकल्प, क्योंकि उसको भी एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में, क्योंकि इसके भी कार्बन इम्पैक्ट्स जो हैं नहीं हैं, तो भविष्य में हम जैसे एक न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बना के खूब सारी बिजली बना लें और उस बिजली के माध्यम से हम जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाएं, यह क्या सार्थक प्रयास लगता है?
4: देखिए, मैं छोटा सा एक वाक्या बता दूं। मैं 1972 में जर्मनी गया था और वहाँ हमें काम करने के लिए एक, उन्होंने उस ज़माने में जर्मनी ने एक शिप बनाया था, कार्गो शिप, जिसका नाम हंसा रखा था और वो शायद वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला शिप था। उस शिप को किसी कंट्री ने अपने यहाँ पोर्ट पर रुकने की इजाज़त नहीं दी, इंक्लूडिंग इंडिया, और फिर वो पूरा शिप दे दिया गया रिसर्च के लिए। तो मैंने अपना बहुत सा काम उस शिप पे किया था। ये एक वाकया हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में। फिर 78-79 में मैं वियना में था एक प्रोग्राम में, और वहाँ पर उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था जो फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसे सिंक्रोनाइज कर रहे थे नेशनल ग्रिड से। साहब, वियना में इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी यूरोप के कंट्री में, मैं बहुत में गया हूँ, इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिया। और जनाब वो अगेंस्ट दैट एनर्जी था वो। तो फिर IAEA ने मुझे अपॉइंट किया, जिस कहते थे वो इंस्पेक्टर्स कहा करते थे, और हमारा काम ये था टू पॉपुलराइज न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो आपने बात कही है वो मेरा एक विषय रहा है 78-79 में। न्यूक्लियर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जो कन्वेंशनल तरीका है एनर्जी बनाने का वो है न्यूक्लियर फिशन का। न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी बहुत क्लीन होगी, लेकिन अगले 50-60 साल मुझे उसके कोई आसार नज़र नहीं आते। हालांकि जापान और फ्रांस में बहुत बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े वो भी रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, फिशन रिएक्टर्स, लेकिन कोई संभावना उनकी अभी मुझे नहीं लगती। तो अभी अगले 100 साल के लिए फिशन एनर्जी ही है और वही हमारा अल्टीमेट सोर्स होगी। भारत ने अभी रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ा काम किया है और वो ये है कि ब्रीडर हाई एनर्जी ब्रीडर जिसमें थोरियम का इस्तेमाल हो रहा है उसे क्रिटिकल कर दिया। और उसमें क्रिटिकल करने का मतलब यह है कि जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है या उससे ज़्यादा। तो क्रिटिकलिटी का मतलब यह है कि जितना इनपुट एनर्जी आप सिस्टम को चलाने के लिए दे रहे हैं या तो उतनी ही या उससे ज़्यादा एनर्जी अगर वो प्रोड्यूस करे। तो हमने थोरियम बेस्ड एनर्जी पे एक नया काम किया है। ये दुनिया में शायद रशिया पहले कर चुका है और अमरीका नहीं कर पाया इसे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसका जो हमें फ़ायदा है वो अब से 10 साल बाद मिलेगा, क्योंकि अभी हमें पहले ये 3 स्टेज प्रोग्राम होता है। पहला स्टेज हमने कवर कर ली, सेकंड स्टेज में हम इसको नेचुरल यूरेनियम के संग थोरियम मिला के और फिर चलाएंगे इसको रिएक्टर को, और अल्टीमेटली टोटल थोरियम से चलेगा, जिसकी इंडिया में उपलब्धि तकरीबन दुनिया का 56% और 70% तक लोग कहते हैं थोरियम इंडिया में है, जिसका मतलब ये है कि 200 साल तक हम एनर्जी ड्राइव कर सकेंगे।
3: चलिए माथुर साहब, आपने बहुत ही सकारात्मक चित्र जो है प्रस्तुत किया है, ये विशेषकर ये थोरियम वाला, क्योंकि इस समय देखें अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इधर देखिए ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। संजीव जी, फ्यूल की जो कॉस्ट जो है वो $100 से ऊपर पर बैरल जा चुकी है और इसकी कॉस्ट हमको आपको ही बियर करनी है।
1: बिल्कुल।
3: तो ये जो ऊर्जा का जो संकट है इसका समाधान हमको देखना पड़ेगा। और जो माथुर साहब ने बताया कि 10 साल हमको उसको लगेंगे, मैं इसको बहुत बड़े टाइम फ्रेम के रूप में नहीं देखता। 10 साल पता भी नहीं चलेंगे आपको कहाँ चलेंगे।
1: बिल्कुल।
3: तो अगर इस तरीके का समाधान हम निकालते हैं तो पर्यावरण के स्तर पर हमको लाभ होगा। बिल्कुल, आप सोचिए कार्बन, अगर एनर्जी, क्लीन एनर्जी अगर आपको मिल जा रही है तो आपका पर्यावरण की कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और एक सस्ती ऊर्जा आपको एक लंबे समय तक मिलती रहे। तो मेरे ख्याल से एक आदर्श विश्व की कल्पना की जा सकती है।
4: मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत, मैं खुद बहुत सरप्राइज हूँ जिस तरीके से हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है। थार के रेगिस्तान में जहाँ ये पाकिस्तान बॉर्डर भी है वहाँ, वहाँ मैंने सुना कि साहब अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया है। मैं हमेशा ये वो सोचता था कि उस सोलर, भाई वहाँ तो इतनी धूल उड़ती है और सोलर पैनल्स जो हैं ज़रा भी धूल आ जाए तो उनकी एफिशिएंसी एकदम गिर जाती है। साहब मैंने उसको देखा तो वहाँ उन्होंने रोबोट लगाए हुए हैं उसके ऊपर, एवरी मिनट इट इज़ क्लीन बाय द रोबोट। तो यानी हर चीज़ का एक इलाज है और वो शायद दुनिया का, मुझे, मैं गारंटी से नहीं कहता लेकिन पहले 5 बड़े प्लांट्स में वो है और ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है सोलर एनर्जी। इंडिया ने समुंदर में तैरने वाले सोलर पैनल्स बनाए हैं क्योंकि अब ज़मीन पर जगह नहीं है सोलर पैनल लगाने की, तो समुंदर में तैरते हुए सोलर पैनल हैं जिनसे एनर्जी, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कमी ये है कि इट इज़ इंटरमिटेंट। जब तक सूरज है
1: तब तक
4: चल रही है, उस या तो आप बैटरियां चार्ज कर लीजिए और उसकी जो बैटरी चार्जिंग है, बैटरीज कॉस्टली है, वो लिथियम बेस्ड है, वो एक उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए वो एनर्जी इंडस्ट्रियली वो एनर्जी आप अमूमन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी है। और फिशन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में लोग ये कहते हैं कि साहब हर कंट्री ये कहता है कि मेरे बैकयार्ड में नहीं, कहीं और लगाओ इसे, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अब एक नई टेक्निक डेवलप की, जब मुश्किल ये है ना कि चेर्नोबिल हुआ या जापान में जो एक्सप्लोजन हुआ उससे पॉल्यूशन और ये सब, किस्सा ये है कि अब हम इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के जा रहे हैं जो जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं उसी की तरह ऑफ हो जाएंगे और किसी एक्सप्लोजन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोटॉन बीम एक टारगेट को हिट करेगी, स्पेलेशन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और आप उससे फिर एनर्जी ड्राइव करें।
3: बहुत सुंदर जानकारी माथुर साहब, और मेरे ख्याल से श्रोताओं को ये समझने में भी अब थोड़ा लगा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को अछूत क्यों कहा जाता है। उसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो ये है कि इसका जो वेस्ट डिस्पोजल करना जो है वो है कि इसको कहाँ करें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, और दूसरा कुछ दुर्घटनाएँ जब हो जाती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर इन दो समस्याओं का अगर हम समाधान कर लें तो क्लीनेस्ट एनर्जी है न्यूक्लियर।
1: और क्लीनेस्ट, और बहुत सोचिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे जो US की न्यूक्लियर सबमरीन्स या वो है, जब वो बनती हैं तब 20 किलो उसमें वो डाल देते हैं और लाइफ ऑफ द इंटायर लाइफ ऑफ दैट सबमरीन, दे डोंट हैव टू रीफ्यूल, दे डोंट हैव, तो इट्स लाइक
4: साहब आजकल ऐसे शिप, कार्गो शिप्स हैं जिसमें एक चार्जिंग के बाद 5 साल तक आप उनको दुनिया में कहीं घुमाते रहिए, आपको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है।
3: तो ये ऐसी कार दिलाई है,
1: बताइए, वही मैं सोच रहा था कि, और थोरियम वाली सुनते हैं कि इतना वो भी इतना खतरनाक भी नहीं होगी।
3: तो चलिए श्रोताओं, काफ़ी एक थोड़ा
1: देख लिया,
3: थोड़ा विषय, हाँ, काफ़ी विज्ञान की भी जानकारी माथुर साहब ने दी, और इस बारे में आप भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो हमारे ग्रुप पर दीजिए, अभी थोड़ी देर में हम उनको सारे श्रोताओं के साथ साझा,
1: हमारे स्पॉन्सर का संदेश,
3: हाँ स्पॉन्सर का संदेश सुनाइए और उसके बाद एक थोड़ा सा लीक से हटके कुछ बनाएंगे, तो पहले आप संदेश सुनाते हैं।
5: श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौर बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1-300-908-681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
3: तो चलिए, ये था हमारे स्पॉन्सर साहब का संदेश। तो संजीव जी, थोड़ा सा विषयांतर करते हैं संगीत की यात्रा में। जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आज हम आनंद बख्शी के जन्मदिन के अवसर पर उनके सुपरहिट गाने सुना रहे हैं
1: जी।
3: लेकिन एक और गीतकार के बारे में मैं चाहूँगा, सिर्फ एक गाना उनका मैं इस कार्यक्रम में सुनाना चाहूँगा, और उनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। और ये गाना सुनाने का एक मेरा एक और कारण है, वो भी अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अलीगढ़ के एक सहपाठी हैं, वो काफ़ी संगीत में रुचि रखते हैं और हमारा कार्यक्रम जो है वो भारत में सुनते हैं। तो सत्येंद्र पाल सिंह

0: बताती है। और थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में यही बताना चाहूँगा कि एक बार मजरूर सुल्तानपुरी साहब को जो था, बताया जाता है कि 1949 में उनको जेल में डाल दिया गया था 2 साल के लिए। और उसका कारण जो था वो ये था कि शायद उन्होंने तत्कालीन सरकार और नेहरू जी के ख़िलाफ़ कुछ किसी कविता में कुछ कह दिया था, जो कि शायद उस समय के एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लग गया था और उनसे कहा था कि माफ़ी मांगिए। और जाहिर है वो स्वाभिमानी आदमी बोले, हमने जो बात कही वो सही है, माफ़ी किस बात की। तो उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वो 2 साल जेल में रहे थे। अच्छा, तो ये जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा बताती है। तो चूंकि हमारे साथ पुराने आज चावल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी इस कहानी के बाद जानना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत सुंदर गाना है और उसका इतिहास एक गाना सबने सुना होगा, लेकिन उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी वह हम श्रोताओं के साथ साझा कर दें।
1: जब भी लाइफ में किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो ठान से एक गाना रिमाइंडर की तरह आता है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ये भूलना नहीं। बट आज मैं चाहती हूँ आप ये गाना एक अलग अंदाज से सुने, अपने साथ रिलेट करके ना सुने, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, ओरिजिनल सिचुएशन के तहत सुने, जिन सिचुएशंस में मजरू साहब ने इस गाने को लिखा था, शायद वो खुद से ये बातें कह रहे थे। 1949 की बात है, मजरू साहब ने उस जमाने में उस सरकार के खिलाफ सही के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार की आलोचना, क्रिटिसिज्म में कुछ पोएट्री की लाइंस लिखी थी। सरकार ने उनसे कहा कि या तो आप माफी मांगेंगे या आप जेल जाएंगे। मजरू साहब जेल गए, जेल तो वो चले गए, लेकिन उनके घर के हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होते जा रहे थे। मदद की उनको सख्त ज़रूरत थी। उस ज़माने में एक दिलदार एक्टर डायरेक्टर राज कपूर साहब, जो हमेशा मदद करते थे लोगों की, उन्होंने जैसे ये बात सुनी वो जेल पहुंच गए, मजरू साहब से मिले, उन्होंने बोला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मजरू साहब खुददार इंसान, उन्होंने बोला आप मेरी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि आप मुझे कुछ काम दिला दें। तो राज कपूर साहब ने बोला मुझे एक गाने की ज़रूरत है, आप एक गाना लिख दें। उन्हें कोई गाने की ज़रूरत नहीं थी। मजरू साहब ने जेल के अंदर 1949 में ये गाना लिखा था, जो कि राज कपूर साहब ने 1970s में अपनी एक फिल्म धर्म करम के लिए इस्तेमाल किया। तब भी उनको नहीं चाहिए था, बट उन्होंने इस्तेमाल किया। वेल, उस फिल्म का सबसे बड़ा हिट यही गाना था, एक्चुअली इट वॉज दी ओनली हिट। बट आज जब आप ये गाना सुन रहे हैं तो आप सोचिए कि मजरू साहब ये लाइन्स खुद से कह रहे थे, जो हम सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं।

ट्रेन के अंदर बैठा इंसान या तो मायूसी को गले लगा सकता है या फिर खुद को उम्मीद से भर सकता है ये कह के कि इस जिस्म से प्यार मत कर मगर इस जिंदगी में अपने आने के मकसद से प्यार कर। और वाकई वो चले गए लेकिन उन्होंने अपने ये गीत हमें दे दिए। आज तक हम ये गीत गुनगुनाते हैं। जब आप ये गाना आप सुने तो इसका हर एक लफ्ज आपको समझ में आएगा मजरू साहब ने क्यों लिखा। और कमाल की बात नहीं कि धर्म करम जिसमें ये गाना इस्तेमाल हुआ था उसके सारे गाने फ्लॉप हो गए बट ये गाना आज तक सुपर डुपर हिट है जिसके लिए राज कपूर साहब ने उस जमाने में मजरू साहब को 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपए क्यों दिए थे ये मजरू साहब को पता था इसलिए बाद में उन्होंने इस गाने के लिए एक भी और पैसा नहीं लिया।

0: दिन बिक जाएगा माटी के मन जगले
1: या तो किसी भी सिचुएशन में बेबस हो सकता है या फिर वो उस वक्त अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ सकता है।
2: तो श्रोताओं, आशा करते हैं सायमा रहमान की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ये एक भारत में FM चैनल चलाती हैं और इनके सोशल मीडिया पे अक्सर इनके क्लिपिंग्स दिखते रहते हैं और एक अच्छी जानकारी थी मेरे लिए। तो इस गाने का अब आप सुनते हैं तो एक अलग ही संदर्भ नज़र आता है। तो ये थी मजरूह सुल्तान सूरी साहब के जीवन से जुड़ा हुआ एक सुंदर संस्मरण। तो चलिए, हम लोगों ने शुरुआत कविताओं से, संगीत से की थी, फिर बीच में विज्ञान की चर्चा की, राजनीति की भी चर्चा की, और चूंकि आज इस स्टूडियो में माता सरस्वती की कृपा है, इतने विद्वान आए हुए हैं हमारे साथ, तो तिवारी जी से कुछ कविता या जो सुनते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को कुछ नया उन्होंने लिखा हो या परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल असामयिक कुछ भी सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। हमारा संकट ये है कि आपने हमें साइंस के बीच में बिठा दिया
4: है। इंजीनियर और साइंस तो सामने आपके ऐसा ही जीरो वाला ही बैठा हुआ
3: तो
4: है।
3: फिजिक्स वो भी उसमें भी न्यूक्लियर
4: फिजिक्स।
3: मैं वो टर्मिनोलॉजी सुन रहा था तो मेरे तो बिल्कुल, और इस तरफ इंजीनियरिंग और सब मिला के यही अंतर है। विज्ञान विश्लेषण करता है, साहित्य संश्लेषण करता है। विज्ञान तोड़ तोड़ के देखता है, खंड खंड टुकड़े करता है, और साहित्य उसे जोड़ जोड़ के मिलाता है। इस उदाहरण में दूं कि अगर एक फूल को लेकर हम केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट से पूछें कि भाई जरा बताइए इसके बारे में, तो वो तोड़ देगा, ये पत्ती है, ये फूल है, ये पुंकेसर है, ये डंठल है, ये बड़ा केसर है, फूल कहीं नहीं मिलेगा
4: जी।
3: लेकिन जब हम उसको आपस में जोड़ के देखते हैं तो उसमें फूल है, और फूल हमें कितना प्रभावित करता है, जो लोग फूल के बारे में जानते हैं कितनी शायरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे फिजिक्स के जो सर हैं वो साहित्य से भी उतना ही अनुराग रखते हैं
4: जी।
3: तो जब इस तरह जब जोड़ जोड़ के हम देखते हैं उसको हम कहते हैं एस्थेटिक, और जब एस्थेटिक की बात आती है तो सौंदर्य की बात आती है। अभी बहुत अच्छा गाना आप सुनवा रहे थे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है पूरी तरह से, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो ऐसे में अब जीवन को किस तरह से देखा जाए, तो मैं बड़ा सकारात्मक सोचता हूँ इस मामले में कि उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है।
5: बहुत बढ़िया।
3: उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है
4: जी।
3: माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता, और सोने की तरह तप के निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता।
5: बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
3: तो इस हौसले में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये होता है कि ठीक है, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए समय को छोड़कर। रोने से उनके सामने क्या फ़ायदा जिनका, रोने से उनके सामने क्या फ़ायदा जिनका, दामन किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, और डूबेगा वही जिसमें हुनर डूबने का है, किसने कहा आंखों में समंदर नहीं होता।
5: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: तो इस तरह से विज्ञान फिजिक्स से आगे मेटाफिजिक्स और साहित्य जब मिलते हैं, तो उपाध्याय जी कह रहे थे कि हम गाना सुनवाते हैं मजरू साहब का जो लीक से हटकर है थोड़ा, और मुझे याद है मजरू साहब के साथ जो घटना हुई हुई। अदब की दुनिया में दो बड़े नाम लिए जाते हैं जो अपनी कविताओं के लिए जेल गए। हिंदी में वो बड़ा नाम है नागार्जुन, जिनको जनकवि कहा जाता है, और उर्दू में जो बड़ा नाम है वो फैज़ अहमद फैज़। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम सारे शायर हैं जो कि जेलों में गए, लेकिन ये घोषित रूप से दो बड़े नाम माने जाते हैं, और मजरू साहब का आपने जोड़ा तो एक तीसरा नाम भी हो गया। लेकिन जब जो लीक से हटकर बात करता है ना, वो दुनिया को कम पछता है।
4: सही।
3: जैसे अगर कोई कहता है कि वो हमारा पैर खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने वाले का पैर खींचा जाता है, और पैर खींचने का मतलब ही होता है कि आगे बढ़ना। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो कुछ लीक से हटकर बात होती है, जो उपाध्याय जी कह रहे थे, तो उस लीक से हटकर पर एक मुझे याद आई, कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। कि लीक से हटकर अलग अंदाज की बातें करें,
5: बहुत खूब।
3: निराशा हो जाती है जीवन में, उसको लेके बैठना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। कि लीक से हटकर अलग अंदाज की बातें करें, और भूल कर गुजरे जमाने आज की बातें करें।
5: खूब, बहुत खूब।
3: लीक से हटकर अलग अंदाज की बातें करें, भूल कर गुजरे जमाने आज की बातें करें, और वक्त बीता लौट कर वापस कभी आता नहीं। वक्त बीता लौट कर वापस कभी आता नहीं, है यही बेहतर नए अंदाज की बातें करें।
5: बहुत खूब,
3: है यही बेहतर नए अंदाज की बातें करें। और इंसानी जज्बा बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा ना कि अगर विज्ञान से पूछें दिल होता है तो कहेगा नहीं होता है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो दो कतरा खून निकला। लेकिन हम जानते हैं कि दिल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान इंजन बनाता है और साहित्य उसे मनुष्य बना देता है।
5: क्या बात,
3: वाह। तो ये सोचने का कि दिल होता है, विज्ञान कहता है नहीं होता है, लेकिन माँ का दिल हम सब समझते हैं, दिल पर इतनी शायरी लिखी गई है। तब ये बात निकल कर आती है कि आदमियत से बड़ा जज्बा कोई होता नहीं।
5: क्या बात,
3: आदमियत से बड़ा। चकबस्त की एक पंक्ति है कि दर्द दिल पासे वफा, जज्बे ईमा होना, यही है इंसानियत और यही है इंसान होना। तभी निकलती है बात कि आदमियत से बड़ा जज्बा कोई होता नहीं, दिल को छू जाए उसी आवाज की बातें करें।
5: क्या बात,
3: दिल को छू जाए उसी आवाज की बातें करें। और संजीव जी देखिएगा एक शेर के, आसमां तक का सफर मुश्किल है नामुमकिन नहीं।
5: बहुत खूब,
4: वेरी नाइस।
5: क्या पॉजिटिव बात,
3: जहां आज भारत पहुंचा है आसमां चांद तक। आसमां तक का सफर मुश्किल है नामुमकिन नहीं, हौसले के साथ गर परवाज की बातें करें।
5: बहुत,
3: हौसले के साथ गर परवाज की बातें करें। और जिस मोहब्बत की बात माथुर साहब कर रहे थे इतने खुलूस से, तब मैं कहता हूं कि प्यार का पैगाम देना आदमी का फर्ज है। प्यार का पैगाम देना अपना, जिनका जो काम है वो हले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कि प्यार का पैगाम देना आदमी का फर्ज है, छोड़िए उनको जो नखरो नाज की बातें करें।
5: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: छोड़िए उनको जो नखरो नाज की बातें करें। पांव मंजिल की तरफ जब बढ़ चले तो खौफ क्या। पांव मंजिल की तरफ जब बढ़ चले तो खौफ क्या, बुजदिलों को छोड़कर जांबाज की बातें करें।
5: बहुत बढ़िया,
3: बुजदिलों को छोड़कर
5: बहुत सुंदर
3: जांबाज की बातें करें। और उपाध्याय जी एक बड़ी बहुत ही मतलब एक दोस्ताना और बिरादराना मतलब सलाह है कि हर किसी से गम खुशी भी बांटना अच्छा नहीं।
5: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे।
3: हर किसी से गम खुशी भी बांटना अच्छा नहीं, जो समझता हो उसी से राज की बातें करें। जो समझता हो उसी से राज की बातें करें। और आज के इस बदलते हुए दौर पर जब मैं देखता हूँ, तब ये बात निकलती है कि खो चुका है आदमी जब आजकल शर्मो हया। खो चुका है आदमी जब आजकल शर्मो हया, तब बदलते दौर में कुछ लाज की बातें करें। तब बदलते दौर में कुछ लाज की बातें करें, है यही बेहतर नए अंदाज की बातें करें। और हौसले के साथ घर परवाज की बातें करें।
4: वेरी नाइस,
3: बातें करें। तो मैं समझता हूँ अगर इस अकीदे के साथ आगे बढ़ा जाए तो समाज में कुछ एक बदलाव सोचा जा सकता है। दुनिया है, चलती रहती है, और इंसानियत भी इसी तरह से चलती रहती है।
5: भाई शंभुनाथ जी ने क्या उम्दा बात कही और शेरों में कही है, मुझे एक अपनी रुबाई याद आ गई
4: जी।
5: और ऐसा है कि दो चीज़ों की कमी है हमारे यहाँ, अगर आप देखें, इंसानियत और मोहब्बत, प्यार। तो एक रुबाई मैंने लिखी थी किसी ज़माने में कि जहाँ इंसानियत पनपे वो मंदिर है वो मस्जिद है, जहाँ इंसानियत पनपे वो मंदिर है वो मस्जिद है, बसा हो प्यार जिस दिल में, बसा हो प्यार जिस दिल में, वही अल्लाह का घर है। बसा हो प्यार जिस दिल में, वही भगवान का घर है। किसी की आरजू नमाज पूजा कुछ नहीं,

0: जहां में प्यार बांटो बस यही सच्ची इबादत है, जहां में प्यार बांटो। और साहब कहीं और मैंने एक लिखा कि प्यार की उसमें जो और इंसानियत में कि स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़ लिए और दब गए हैं डिग्रियों की बोझ के तले, पर ना समझ सके इंसानियत है क्या, इस बारे में किताबों में कुछ भी नहीं लिखा, इंसानियत का सर जो ना उठा सके, गिरते हुए को गले ना लगा सके, वो आदमी कहाँ है, हैवान है जो गीत प्यार का ना गुनगुना सके। जो तो ये मेरे
1: बहुत सुंदर। और आज तो संजीव जी आज तो हम लोगों ने पूरा सर्किल जिसको बोलते हैं कंप्लीट किया है बिल्कुल, इतने विषयों पे हम लोगों ने बातचीत की है तो, और हमारे श्रोताओं ने भी कार्यक्रम को काफी पसंद किया है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ श्रोताओं की प्रतिक्रिया सुना दूं। तो हमारे यतीन्द्र गुप्ता जी कहते हैं, नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद वॉइस ऑफ संजीव जी। राजीव जी लिखते हैं, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर मी, संजीव जी डिड स्टडिंग इन AMU। संजीव जी आप रहस्य छुपा के रखते हैं, श्रोताओं को बताते नहीं हैं, लेकिन आज देखिए जग जाहिर हो गया।
2: बिल्कुल।
1: फिर यतीन जी लिखते हैं, कैन वी ऑल्सो हाईलाइट चूजिंग हिंदी इन सेंसस।
2: तो हाँ, तो ये जरूर जो है
1: अभी देखिए अगर होने वाला है तो प्रदीप जी से बात करते हैं वो हम लोग
2: जी। और बट एक बार बता दें सुनने वालों को कि हम लोग का सेंसस होने वाला है, तो लैंग्वेज में जरूर हिंदी लिखिए और क्या कहते हैं जो हमारा और इंडियन जहाँ हम लोग की कहाँ से हैं, लाइक यू नो, तो वी नेशनैलिटी मतलब
1: एक्चुअली इसमें जैसा मैं समझता हूँ कुछ समस्या ये आ जाती है कि हम लोग अपनी और भाषाएं जैसे बोलते हैं घर में, पंजाबी बोलते हैं या तेलुगु बोलते हैं या कुछ भी, तो वो लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेरे ख्याल से हिंदी अवश्य लिखें, वो भाषा भी लिखें
2: जी,
1: ताकि होता क्या है कि वो कटेंगे तो बटेंगे वाली बात हो जाती है, उसमें पता लगा इतनी सारी भाषाएं हो जाती है और साइजेबल मेजॉरिटी किसी की नहीं होती है। तो मेरा मानना यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है, हर प्रदेश में थोड़ी बहुत बोली जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो और राजकीय भाषा भी है। तो जो सेंसस हो रही है तो सारे श्रोताओं से अनुरोध यही है कि अपने सेंसस में जब भाषा कौन सी बोलते हैं तो उसमें हिंदी का नाम अवश्य लिखें, जिससे ताकि हिंदी को अधिक वोट मिले, ताकि उसके प्रसार के लिए आगे जो भी कार्यक्रम हो उसमें फिर अच्छी संभावनाएँ रहेंगी। तो चलिए गुप्ता जी आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। राजीव जी कहते हैं, सच ए नाइस फ्रॉम माथुर जी, ओवरजॉयड इट। तो आपकी कविताएं माथुर जी खूब पसंद की गई हैं, माथुर जी की सुंदर और सामयिक कविता। ऋचा जी लिख रही हैं, डॉक्टर शैलजा जी लिखते हैं, प्रोफेसर तिवारी जी का स्वागत है, हिंदी उर्दू के अटूट संबंध की पुष्टि के लिए, नीरज व काका की कविताओं का इतना सुंदर संग्रह सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। राजीव जी कहते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, आई थिंक दिस टाइप ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय UPSC JEE लाइक अदर नेशनल लेवल एग्जाम। तो हमारे श्रोता भी जो है वो नीट का जो घटना हुई है उससे चिंतित हैं, तो चलिए उसके समाधान पर कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, आशा करते हैं आने वाले समय में उसका समाधान मिलेगा। ऋचा जी कहती है, आनंद बख्शी जी के हर गीत मीनिंगफुल और यूनिक है, मेरा पसंदीदा गीत फरमाइश है आदमी मुसाफिर है। ऋचा जी ये गाना हम अपनी लिस्ट में लेके आए हैं क्योंकि इस गाने में उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और समय मेरे ख्याल से रहेगा तो इस गाने को अवश्य सुनवाएंगे। शैलजा जी लिखते हैं, तिवारी जी के विचार हर शिक्षक के लिए अनिवार्य होने चाहिए, प्रोफेसर माथुर एक आदर्श व समर्पित अध्यापक व वैज्ञानिक हैं, उनके व तिवारी जी के संतुलित विचार प्रशंसनीय हैं। ऋचा जी लिखती हैं, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन दर्पण रेडियो। पैट वाराणसी जी कहते हैं, संजीव एंड प्रदीप वेरी नाइस इंसाइटफुल डिस्कशन पंक्चुएटेड बाय सम वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ आनंद बख्शी एंड एन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एलुमिनी गेट टुगेदर टू। बिल्कुल यहाँ गेट टुगेदर, और पैट वाराणसी जी हम लोगों ने यहाँ पे आज एक चाय भी पी है तो पूरा अलीगढ़ का पूरा आनंद लिया है। राजीव जी ने कुछ हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी दी है और लिखा है कि नाइस इन्फो फॉर मी टू यूज़ H2, इट्स केमिकल प्रोसेस विच वी आर हियरिंग। शैलजा जी लिखती है, इन दो भारतीय दिग्गजों से विचार विमर्श करना आज के कार्यक्रम का विशेष आकर्षण है। प्रोफेसर माथुर विज्ञान के क्षेत्र में एक जाने माने लेखक ही नहीं, एक मझे हुए कलाकार, कवि व शायर भी हैं। उनकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के पीछे छिपे रहस्यों को संपूर्ण अध्ययन पुस्तक के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जो इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर माथुर की इस पुस्तक ने मुझे उनके विस्तृत ज्ञान से विस्मित कर दिया है। आपसे माथुर जी, इस पुस्तक के बारे में भी बात करेंगे हम इस गाने के बाद। वेरी नाइस टॉक ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंस, यतीन जी बोल रहे हैं, शैलजा जी कहती हैं, प्रोफेसर तिवारी व प्रोफेसर माथुर अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाकर उनकी प्रगति व प्रतिष्ठा में योगदान के लिए आपका साधुवाद व अभिनंदन। उन भारतीयों की ओर से विदेशों को अपनी कर्मभूमि बनाकर उसी को संवारने में खोते रहे। मृणाल शर्मा जी कहते हैं, विज्ञान की मणियों के दर्शन का धागा पिरोया जाए तब विज्ञान का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, हमेशा की तरह अद्भुत प्रस्तुति। शैलजा जी कहती हैं, सचमुच तिवारी जी, यदि आपकी शायरी, कविता व साहित्य न हो तो विज्ञान की भाषा हम जैसे साधारण व्यक्तियों तक कैसे पहुँचेगी। संजय अग्निहोत्री जी कहते हैं, तिवारी जी और माथुर साहब को नमस्कार, उनके बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ, मता ए लौह ओ कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून ए दिल में डुबोली है, उंगलियों ने जवां पे मोहर लगी है तो क्या रख दी है एक और हल्का ए जंजीर में जबां मैंने। मैं इसको शायद तरन्नुम में नहीं पढ़ पाया, फैज़ अहमद फैज़ साहब की है। तो और महेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं, थैंक्स रेडियो दर्पण टीम, ए वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरटेनिंग प्रोग्राम। तो हमारे श्रोताओं ने भी कार्यक्रम को पसंद किया है और गाना एक हम सुनवाते हैं।
2: पहले तो एक प्रायोजक का संदेश,
1: बिल्कुल एक संदेश सुनाइए, उसके बाद गाना सुनवाते हैं।
3: करी मास्टर।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: Are you looking for personal or business tax or self-managed Superfund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
2: तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स और फोर्ब्स तो अकाउंटिंग का संदेश।
3: तो संजीव जी, अपने रिकॉर्ड की सुई वापस आनंद बख्शी जी की ओर लेके जाते हैं। बीच में हमने और विषयों पे भी बात की, मजरू सुल्तानपुरी के बारे में भी बात हुई। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज एक विशेष गाना अब हम जो अगला सुनवा रहे हैं, क्योंकि आनंद बख्शी जी ने उनको चार गाने उनको जो थे फिल्म फेयर के अवार्ड मिले, लेकिन 40 से ज़्यादा नॉमिनेशन थे।
2: हाँ,
3: मतलब ये सोचो कितना होता है ना पास जाके, जो नीट एग्जाम वाली जो बात कर रहे थे कि नॉमिनेशन हुआ लेकिन मिल नहीं पाया। हाँ, तो वो उनकी सफलता को दिखाता है कि उनके गाने कितने लोकप्रिय थे और लोग उनको पसंद करते थे। वो शुरू में जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में तो एक गायक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि गायन से अधिक उनका लेखन है। तो कुल मिला के उन्होंने पूरे करियर में मेरी जानकारी में सिर्फ एक ही गाना गाया और वो थी फिल्म मोम की गुड़िया के लिए, और वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। उपाध्याय जी, कार्यक्रम के समाप्त होने का समय आ गया।
2: बिल्कुल,
1: ये घड़ी उधर वाली थोड़ी स्लो है और कंप्यूटर पे 10:55 दिखा रहा है, तो हाँ, सिर्फ 5 मिनट,
2: 4.5 मिनट है एक्चुअली
1: जी।
2: तो और मैं ऐसी अपेक्षा भी कर रहा था, क्योंकि जो इतनी महान विभूतियां आपके साथ मेहमान में हो,
1: तो एक बार और प्रोग्राम पे आप लोग को आमंत्रित करेंगे।
2: बिल्कुल। तो माथुर जी, आपसे अभी हमारे श्रोताओं ने आपकी एक मेडिकल के बारे में, एक आपकी पुस्तक है उसके बारे में चर्चा की थी, संक्षिप्त रूप से हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका कार्य उस दिशा में जारी है।
3: एक्चुअली एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है जिसका नाम है स्प्रिंगर नेचर। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की पब्लिशिंग हाउस है और साइंटिफिक किताबें बहुत पब्लिश करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे लिखा कि वो एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं बायो इंजीनियरिंग, तो मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैंने पहली किताब उनको भेजी थी जिसमें जो हमारे यहाँ जैसे एमआरआई करते हैं और कैट स्कैन करते हैं, इस सब के पीछे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, ये वहाँ के मेरी मिसेस क्योंकि हॉस्पिटलाइज थी तो मेरा डॉक्टरों से बहुत वास्ता पड़ता था, तो मैं उनसे ही पूछता था कि साहब एमआरआई ले रहे हैं, तो मैं पूछता कि मालूम है कैसे आ रही है ये इमेज। तो वो डॉक्टर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन था, वो क्या साहब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको डिसाइफर, ये जो जब आ जाएगा इमेज तो मैं उसे डिसाइफर कर दूंगा कि इसका ये मतलब है। तो मैंने कहा कि आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे वर्क करता है? तो कहा मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा जितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, स्टेथोस्कोप लीजिए, शुरू में पहले एक ट्यूब हुआ करती थी और अब आप देख रहे हैं, तो ये सब इम्प्रूवमेंट इस वजह से हैं कि लोगों को समझ में आया कि कैसे काम करते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो किताब मैंने की, तकरीबन 130 पेज की होगी वो किताब कुल, और वो मेरी सब में कॉस्टली बुक है। इंडिया में उसकी कॉस्ट 14,000 है और यहाँ $300 के करीब है ऑस्ट्रेलिया में, तो अच्छी रॉयल्टी मिली है उस किताब से। और अब उसी सीरीज़ में एक दूसरी किताब में लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर ठीक ठाक रहा तो 3-4 महीने में पब्लिश।
1: चलिए, अब एकदम ही समय समाप्त हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों को।
2: तिवारी जी, आप भी तिवारी जी कुछ कहना चाहें तो।
4: आपने शुरू में कहा था कि जो क्रोध होता है ना, क्रोध पे कुछ बात आप कर रहे थे
1: जी, जी।
4: तो क्रोध जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो दुश्मनी में बदल जाता
1: जी।
4: है। तो दो लाइन सुना दूं?
1: बिल्कुल,
4: एक मिनट में।
1: बिल्कुल हाँ।
4: कि सोच कर मुझको ये हैरानी बहुत है कि दुश्मनी अपनों ने ही ठानी बहुत है। सोच कर मुझको ये हैरानी बहुत है कि दुश्मनी अपनों ने ही ठानी बहुत है, और जान कर मैं अब तलक अनजान सा हूँ। हाँ, उसी ने मुठ्ठियाँ तानी बहुत है। हाँ, उसी ने मुठ्ठियाँ तानी बहुत है, और ज़िंदगी में फूल भी कांटे भी, चंद खुशियाँ तो बहुत बहुत परेशानी बहुत है, और आ सके आँखों में अगर दो बूंद पानी, जिंदगी के बस यही मानी बहुत।
2: इससे बढ़िया क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता।
1: चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह फिर आप लोग से मुलाकात होगी।
2: बिल्कुल, और चलते चलते आपके लिए एक सुंदर सा गीत हमारी ऋचा जी ने फरमाइश की थी कि उनका गाना, तो अपनापन फिल्म का गाना उनका।

0: श्रोतेहो कार्यक्रमात पुन्हा स्वागत. आता आपण जे बासुरी वादन ऐकत होतो त्याचे प्रस्तुतकर्ता आहे श्री राकेश चौरसिया. आज आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत डॉक्टर सुरुजीत. त्यांची कंपनी नटकट घर हे पंडित राकेश चौरसियांना सिडनीमध्ये घेऊन येत आहेत. त्यांच्या कार्यक्रमाचं नाव आहे राग अँड रिदम. आज आपण डॉक्टर सुरजीत यांच्याकडनं या कार्यक्रमाची माहिती घेऊया. डॉक्टर सुरजीत अमराठी असल्यामुळे हिंदी व इंग्रजी भाषेचं प्रयोग होणं साहजिक आहे आणि त्याबद्दल क्षमस्व. पण आपण म्हणतोच तसं संगीताला भाषेची मर्यादा नाही. डॉक्टर सुरजीत आपका स्टुडिओ में बहुत बहुत स्वागत.
1: बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई. ये दूसरी बार, इनफैक्ट तीसरी बार मैं आपसे मिल रहा हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी.
0: और आप इस बार भी कुछ नया कार्यक्रम हम सिडनी कर के लिए लेकर आए हैं. आपने कहा आप इससे पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऑडियंस आपसे पहली बार शायद बात करने वाले हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आपके बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं.
1: विनीत भाई, मैं आई एम ए किडनी स्पेशलिस्ट. मैं वेस्टर्न सिडनी ब्लैकटाउन हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन शायद वो मेरी पहचान नहीं है. मेरी पहचान है कि मैं इंडिया से आया हूँ एंड आई लव कॉलिंग माई सेल्फ एन इंडियन. मैं जहाँ पे भी रहूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है. तो बिटवीन मी एंड माई लवली वाइफ शबा, वी हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप कॉल्ड नटखट घर, थ्रू विच वी वॉन्ट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, डांसेस, आर्ट. और हमने इसके पहले हम सुजात खान साहब को लेकर आए थे मार्च में, और अभी पंडित राकेश चौरसिया जी को लेकर आ रहे हैं. इनका 14 अगस्त को सिडनी में प्रोग्राम है, 16 को इनका मेलबर्न में हम प्रोग्राम करवा रहे हैं. नसीरुद्दीन शाह साहब हैज सेड यस टू कमिंग टू परफॉर्म एज विद हिज थिएटर ग्रुप फॉर अस, एंड वी डोंट हैव द डेट्स बट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो द आइडिया इज सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, हम म्यूजिक, आर्ट, थिएटर, डांसेस, सब कुछ यहाँ पर प्रमोट करना चाहेंगे. वी वॉन्ट द इंडियन डायस्पोरा, वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू सी the richness in Indian culture, and it's not just restricted to Bollywood movies. I think that's the whole point.
0: It's a wonderful thought. Aur main jab bhi aap se baat karta hu, you're very passionate ki India ka jo image hai, that should not be just based on Bollywood, and you want to go beyond that.
1: Yeah, that's true.
0: Bahut achhi baat hai ki aap naye programs yahan pe leke aa rahe hain, aur especially Hindustani classical music ke upar aapka abhi kafi dhyan hai. इस बार आपको डॉक्टर पंडित जी को लाने का ख्याल कैसे आया? मतलब उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन, कोई कहानी कि आप उन्हें यहाँ लेके आ रहे हैं?
1: विनीत भाई, बचपन में, मतलब वो 80s का इरा था जब मैं यंग टीनेजर था, और वो दूरदर्शन ही हमारा टीवी था. तो उसमें कुछ नाम हमेशा आते रहते थे, एंड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, उनके फ्लूट हम सुनते रहते थे. And then I had been following him. Pandit ji ab bahut zyada nahi bajate hain mere khayal se, he doesn't play a lot now. I think in fact he doesn't play publicly at all, lekin unka legacy carry kiya hai ye Rakesh ji ne. So Rakesh ji mere khayal se 3-4 saal ki umar se Hariprasad ji se seekh rahe hain, unke bhatije hain ye. And amongst all the disciples of Hariprasad Chaurasia, he has such wonderful disciples spread all over India and all over the world. I think Rakesh is one of his finest. And मैं इनफैक्ट जब शुजात खान साहब आए थे तो हम ऐसे ही बैठ के म्यूजिशियंस के बारे में बात कर रहे थे. शुजात खान साहब स्पोक वेरी वार्मली अबाउट पंडित राकेश चौरसिया. तो अच्छा, वहाँ से बहुत थॉट शुरू हुआ. और जुहेब भाई जो राकेश जी के साथ तबला बजा रहे हैं, वो शुजात खान साहब के साथ भी आए थे.
0: अच्छा.
1: सो जुहेब, उस कन्वर्सेशन में वी आर सिटिंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट राकेश जी, एंड जुहेब सर आई हैव इस नंबर. तो मैं कह यार प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कर दो, और फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड.
0: नाइस, वेरी गुड. और पंडित राकेश जी हरिप्रसाद जी से रिलेटेड भी हैं?
1: हाँ, उनके भतीजे हैं इनफैक्ट ये.
0: अच्छा.
1: तो वो बिल्कुल बचपन से उनके गोद में बैठ के सीखा है उन्होंने.
0: अच्छा. हाँ, बहुत बढ़िया. और हमें भी उत्सुकता रहेगी कि वो जब यहाँ पर आए, हम लोग भी उनके बांसुरी वादन का अनुभव ले सकें. मेरा आपसे अगला सवाल था कि हमारी ऑडियंस में कई सारे अलग अलग प्रकार के श्रोता लोग होंगे, जिसमें कुछ हमेशा इस म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते होंगे और कुछ नए नए इस म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं. तो उनके लिए पंडित जी का इम्पोर्टेंस आप कैसे समझा सकते हैं? हिंदुस्तानी क्लासिकल वर्ल्ड में पंडित जी का इम्पोर्टेंस कैसे समझा सकते हैं अपना?
1: आई थिंक विनीत भाई, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि अच्छा म्यूज़िक, अच्छा आर्ट, कोई भी कला, इट गोज़ बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन और वट एवर यू वॉन्ट टू नेम. और मैं अपने जीवन से इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. ये मेरे बेटे साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, एन जी 9 साल के. तो ये बिल्कुल माई वाइफ वॉज अ फोर्स बिहाइंड मेकिंग श्योर दैट ही लर्न्स पियानो. सो ही इज़ बीन लर्निंग वेस्टर्न पियानो फ्रॉम द एज ऑफ 3. अब ये घर में बैठ कर जब पियानो बजाते, मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन सम ऑफ द पीसेस ही प्लेज लाइक मूनलाइट सोनाटा, आई जस्ट लव देम. तो तब ये बात मुझे समझ में आया कि यू डोंट हैव टू नो अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक टू एन्जॉय इट. अच्छा म्यूज़िक मुझे लगता है कि अच्छा लगता है. तो इट जस्ट गोज बियॉन्ड दैट. एंड इट्स इफ़ यू लुक एट हिम, ये राकेश जी हैज़ प्लेड विद लॉट ऑफ वेस्टर्न ग्रुप्स एज वेल. इन्होंने अभी 2024 में आई थिंक इनको ग्रैमी मिला, 2 ग्रैमी अवार्ड्स मिला, एंड ही वाज प्लेइंग विद अ ग्रुप हु आर बेसिकली अमेरिकन बेस्ड म्यूजिशियंस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूजन, अ लॉट ऑफ मिक्सचर, एंड एज आई सेड इट गोज बियॉन्ड लैंग्वेज.
0: हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने जाकिर हुसैन साहब के साथ भी कार्यक्रम किए हुए हैं जिसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिले.
1: दैट इज ट्रू. वो उस ग्रुप में जाकिर हुसैन साहब थे, देन आई थिंक देयर वाज अमेरिकन बेला फ्लेक, और उनका वो एल्बम था वी स्पीक विच वॉन द बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम ग्रैमी 2024, और उसका एक ट्रैक था पास्तो विच वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस इन 2024.
0: अरे वाह, क्या बात है. और मतलब उस इसमें भी मुझे लगता है बांसुरी का एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में बांसुरी को मतलब एक बहुत ही सिंपल तरीके से बांसुरी बनाई जाती है बाम्बू से, लेकिन उसका म्यूज़िक हमेशा मधुर रहा है. और योगा या मेडिटेशन में बांसुरी को हम लोग हमेशा सराहते हैं कि बहुत ही शांत म्यूज़िक है उसका.
1: That's true. It's such a calming effect. अभी आपने शुरू में बजाया तो यहीं बैठे बैठे कितना अच्छा लग रहा था. Just being transported to another world, जहाँ पे कुछ नहीं, हमारे चारों तरफ सिर्फ म्यूजिक है.
0: करेक्ट. अचानक से एकदम गति थम जाती है, एकदम शांत हो जाता है सब कुछ. मुझे लगता है कि जब यहाँ आएंगे तो काफी लोग बांसुरी सीखना चाहेंगे उसके बाद में. और मुझे लगता है बांसुरी सीखना इतना आसान भी नहीं है. मेरे कुछ दोस्तों ने भी प्रयत्न किया हुआ है बांसुरी सीखने का, बट श्वास पे नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं है. तो बांसुरी बजाना काफी कठिन है जहां तक मुझे समझ में आया है.
1: दैट्स ट्रू. व्हिच रिमाइंड्स मी, मैं कहीं पे देख रहा था हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिन्होंने राकेश को सिखाया, राकेश जी को सिखाया, तो उन्होंने कहीं पे कमेंट किया था कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो रेसलर बने. तो उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शायद शौक नहीं था. तो हरिप्रसाद जी छुप छुप के बांसुरी सीखते थे और यहाँ रेसलिंग भी सीख रहे थे पिताजी के गाइडेंस में. तो लेटर ऑन ही सेड कि बिकॉज ऑफ हिस रेसलिंग डेज उनका वो लंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा. तो वो कहते थे कि बांसुरी बजाना दिखने में आसान है, लेकिन इट एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. Along with your softness, you also need a lot of strength, a lot of lung power to be able to perform for a prolonged period of time.
0: हाँ, सही बात है. And आप डॉक्टर होने की वजह से मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा कि बांसुरी से मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको दिखते हैं?
1: आई थिंक सो. मतलब क्योंकि हम जैसे लंग फिजियो जो कराते हैं, माय रेस्पिरेटरी फिजिशियंस कलीग्स, दे टेल मी दैट इट्स अ लॉट ऑफ इट इज अबाउट बीइंग एबल टू ब्लो हार्ड.
0: राइट.
1: तो आई थिंक प्लेइंग दीस सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बांसुरी हो या वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, इट डज हेल्प द लंग पावर. एब्सोल्युटली.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि आपने अब आप इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तो आपकी अभी तक पंडित जी से बात हुई? कोई अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें?
1: हाँ, इनफैक्ट कई बार. इट हैज़ बीन सो प्लेजेंट. मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ. तो पंडित जी 14 को सिडनी में परफॉर्म कर रहे हैं और 16 को ही इज़ परफॉर्मिंग इन मेलबर्न. तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ग्रुप कॉल्ड इंडियन डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड चंक ऑफ असर इन सिडनी. तो 15 अगस्त को हमने एक ऐसी डॉक्टर्स एंड फैमिलीज और जो भी दोस्त वगैरह है, वे अरेंज ए गेट टुगेदर. तो मैंने पंडित जी को, पंडित जी हम ऐसा कर रहे हैं, वी वुड रियली लव इट आप यहाँ पे होंगे, कैन यू प्लीज़ कम एज ए चीफ गेस्ट. और तो उन्होंने कहा क्यों नहीं. फिर कहा पंडित जी हमारे 2-3 अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, उनको रखेंगे हम, बाकी जो बाथरूम सिंगर हैं उनको आपके सामने नहीं रखेंगे. ही हैड ए गुड लाफ. एंड कहते नहीं नहीं भाई, कहते मज़ा तो उसी में, सबको लेके आओ, जितना वेराइटी होगा म्यूज़िक का उतना ही मज़ा है. एज लॉन्ग एज पीपल इन्जॉय म्यूजिक, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, पीपल शुड जस्ट इन्जॉय म्यूजिक. तो बड़ा अच्छा लगा वो सुन के, जितनी सहलता से उन्होंने इस बात को कहा.
0: हाँ.
1: वो बड़ी छू गई मुझे वो बात.
0: हाँ, और शायद शुरुआत वहीं से होती है. क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ट्रेंड तो नहीं है.
1: हाँ.
0: लेकिन म्यूजिक को हमेशा पसंद करते हैं. हाँ. और कुछ कोशिश अपनी तरफ से चलती रहती है.
1: बिल्कुल.
0: डॉक्टर सुरजीत, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद में और बात करेंगे आपके साथ.
1: Sure.

0: श्रोतेव कार्यक्रमात पुन्हा स्वागत. आपण गप्पा करत आहोत डॉक्टर सुरजीत तरफदार यांच्यासोबत. डॉक्टर सुरजीत, आपसे अगला सवाल. आप जो ये प्रोग्राम ला रहे हैं राग एंड रिदम, एंड पंडित राकेश चौरसिया जी यहाँ पर आने वाले हैं, जब ये कार्यक्रम होगा तो इसके अंदर हमारी ऑडियंस जो भी वहाँ पर आएंगे वो उस प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो प्रोग्राम किस स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा?
1: देखिए, ये तो इनका मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के मेरे ख्याल से एकदम पीक पे कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनमें से एक राकेश चौरसिया जी आते हैं. सो इट्स माय पर्सनल टेक

0: इज हम जिस दुनिया में रहते हैं, आज की दुनिया खास तौर से, मेरे ख्याल से वी आर ऑल रशिंग अराउंड, हमें पास समय नहीं है रुकने का, थमने का, अपने चारों तरफ देखने का, सोचने का। जब भी मैं इस तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, स्पेशली जब मैं लाइव इनको देखता हूँ बैठ कर और सुनता हूँ इनको, तो इट हेल्प्स मी टू स्लो डाउन, टू काम डाउन, टू जस्ट एन्जॉय द मोमेंट, द वर्ल्ड अराउंड मी। और वो जो दो घंटा एक घंटा हम स्थिरता अपने अंदर लेके आते हैं, वो उसका एक बहुत, मेरे ख्याल से, एक प्रोफाउंड इफेक्ट रह जाता है जो हमें रोज़ की ज़िंदगी में हमें याद दिलाता है कि हम नहीं भागें, हम रुक जाएं कभी ना कभी और दुनिया को देखें अपने चारों तरफ। एंड द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक, आई मीन वो तो मेरे ख्याल से 70,000 साल पहले से ही शुरू हो गया था, इट विल नेवर डाई, द सूदिंग इफेक्ट, द हीलिंग इफेक्ट दैट इट हैज़ ऑन योर सोल ऑन अ पर्सनल लेवल, आई थिंक ईच ऑफ अस फील्स इट समवेयर डीप डाउन इनसाइड अस।
1: Right.
0: So I think that's what I would expect people to get.
1: 100%. नहीं, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें खो जाते हो उस म्यूज़िक में। हर एक का पसंद अपना अपना है, लेकिन म्यूज़िक हमेशा हर किसी के दिल में एक स्थान बनाकर है। बहुत सही बात कही आपने। इस कार्यक्रम में पंडित जी के अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं?
0: हाँ, जिनके साथ जुहैब खान आ रहे हैं, ही इज़ एन अपकमिंग स्टार। जुहैब खान has performed with the likes of Shujaat Khan, Rakesh Chaudhary ke sath inhone kiya hai, he has played with Zakir Ali in the past, he's a young bright man, we had the opportunity of witnessing his performance jab ye Shujaat Khan sahab ke sath aaye the,
1: acha,
0: and so he's coming back with Rakesh ji.
1: Kya baat hai, to do artist aa rahe hain, haan ji, haan ji, bahut badhiya. Iske sath mein koi local artist bhi unke sath kar rahe hain ya ye do artist prastut kar rahe hain karyakram?
0: For this program, we are limiting ourselves to these two artists. Lekin, Vinit bhai, I might mention ki we are looking at promoting local artists. So we have been talking about having a half-day event or a one-day event even, based in, to begin with, Sydney, and eventually maybe we'll take it to cities across Australia, jahan pe hum local classical music, local classical Indian dances ko promote karna chahenge. So I might say that the contact details are on nutkhadgar.com.au. तो अगर कोई श्रोता इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ टू रीच आउट टू अस।
1: आपने भी ये बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा आपके कंपनी के बारे में भी आपसे पूछता हूँ सवाल। मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी कंपनी नटखटघर नाम से रजिस्टर्ड है और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है, पिछले कई कार्यक्रम उन्होंने सादर किए हैं, आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: नटखटघर नाम का ही मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। सो माय वाइफ द लवली शबा इज़ ए बिग फैन ऑफ शुजात खान साहब, और वो घर में अक्सर बैठ के मतलब क्लासिकल म्यूजिक सुनती रहती है, एंड शुजात खान से भी सम ऑफ हिज सिंगिंग इज सेमी क्लासिकल, तो वो सुनती रहती है। तो एक दिन उसने ऐसे ही रैंडमली मुझे लास्ट ईयर कहा कि सुजीत, हमें इंडिया जाना चाहिए खान साहब का परफॉर्मेंस देखने के लिए, और मैंने वैसे ही जवाब दे दी, करे इंडिया जाने की जरूरत है, खान साहब को यहाँ लेके आ जाते हैं। सो शी टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट मी एंड सेड कि ठीक है, अगर आपको लगता है ला सकते हो तो आप करके दिखा दो। तो मैंने कुछ नहीं कहा, एंड समहाउ मुझे नहीं पता कैसे मुझे शुजात खान साहब का नंबर मिला हाथ पैर मार के, एंड आई रीच्ड आउट टू हिम, एंड तो उन्होंने, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं ऐसे डॉक्टर हूँ, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पहले कभी ऐसे कोई शोज़ ऑर्गेनाइज किया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड विथ ऑल माई ऑनेस्टी आई सेड, खान साहब मैं ना अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। तो वो दो मिनट तक हंसते रहे, कहते कि भैया ऐसा जवाब मैंने कभी नहीं सुना, मैं कहते मैं 20-25 साल से परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ। देन ही सेड कि आई एम कमिंग टू सिडनी, सो वाई डोंट वी मीट इन पर्सन एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। तो मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं कहा खान साहब मैं बहुत अच्छा मटन करी बनाता हूँ, मैं लेके आ जाऊँगा, शर्त ये है कि मेरी वाइफ सबा जो आपकी फैन है वो साथ में आएंगे, लेकिन हम सबा को बताएंगे नहीं कि हम आपसे मिलने जा रहे हैं। एंड टू माय अदर सरप्राइज ही सेड यस। तो वी डिड दैट, और ऑन द डे शबा ने रोटी बनाया और मैं कहता रहा कि मेरा कोई स्कूल फ्रेंड आ रहा है, और फिर जब वो मिली तो द लुक ऑन हर फेस, कभी अगर मैं डिमेंटेड हो गया तो भी शायद मैं उस लुक को नहीं भूलूंगा। एंड तभी मैंने फिर वो ख्याल आया कि यार ये सबा को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, 500 पीपल केम टू सी शुजात खान साहब, उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। देन आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ कंपनी एंड देन वॉट बेटर अ नेम देन नटखटघर, क्योंकि वो नटखटपन से ही शुरू हुआ था। सो दिस इज हाउ वी केम इनटू एग्जिस्टेंस।
1: वाओ, वंडरफुल स्टोरी, और नाम भी बड़ा अनोखा, नटखटघर रखा आपने उसका, काफ़ी अच्छा। तो अब नटखटघर ने अभी काफ़ी कार्यक्रम सादर किए हैं, आप अभी लोकल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपने इसके बारे में अभी और सोचा हुआ है या अभी दिस इज इन प्रोग्रेस, प्लानिंग इज इन प्रोग्रेस फॉर दिस?
0: It's actually in progress. So what happened was, in the last few weeks I've been fortunate enough to have Nasiruddin Shah Saab confirm
1: क्या बात है, डिटेल्स तो नसीरुद्दीन शाह सर भी आने वाले
0: हैं विद अ ग्रुप ऑफ सिक्स, सो वी विल हैव हिम हियर, सो दैट विल नीड अ फेयर बिट ऑफ प्लानिंग टू पुल इट ऑफ एंड वी वांट टू गेट इट, ऑफ कोर्स वी गेट टू वांट टू गेट इट बैंग ऑन. और साथ ही साथ में ऑन द बैकग्राउंड मैं और सभा काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 950,000 इंडियन पीपल फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड है इस कंट्री में, इट्स अ बिग नंबर. और हमारे लोगों में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे इंडियन लोग, बेशक वो फिल्मी गाना ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे ही लोग हैं जो गाना गाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पार्टी में बैठ के गाना गा रहे हैं. ये आप अगर आप ध्यान से सोचें तो बहुत कम देश के लोग ऐसे करते हैं. लोकल ऑस्ट्रेलियन लोग भी ऐसे बैठ के गाना नहीं गाते जैसे हमारे लोग गाते हैं. सो आई नो देयर इज अ फेयर बिट ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल. सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग ए हाफ ए डे और ए वन डे इवेंट जहाँ पे हम लोकल टैलेंट को प्रमोट करेंगे.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया.
0: हाँ, तो अभी फाइनल डिटेल्स नहीं वर्कआउट किया है, बट आई एम डेफिनेट दैट दिस इज समथिंग दैट वी विल लाइक टू डू इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स
1: और सो. नाइस. तो एक तरफ से एंटरटेनमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ से टू प्रमोट लोकल आर्टिस्ट एज वेल.
0: एंड इट एनकरेजेस आवर चिल्ड्रन टू सी कि हाँ भाई यहाँ पे भी हैं लोग. हाँ, हम भी कर सकते हैं ये.
1: हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संकल्पना है. इस प्रोग्राम के लिए, राग एंड रिदम प्रोग्राम के लिए, आप जो भी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई चैलेंजेस आए हैं या इट हैज़ बीन लाइक योर एक्सपीरियंस इज वर्किंग आउट इन दिस वन?
0: द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस आई सपोज इज टू रीच आउट टू पीपल, मतलब आप जैसे लोगों का हेल्प. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज देखिए मैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं 30 साल से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ और पहले कभी इन चीज़ों में हम नहीं गए, तो आई डोंट हैव अ बेस ऑफ पीपल हु कैन फॉलो मी एंड हु नो कि डॉक्टर सुजीत इज गोइंग टू डू दिस. सो आई नीड एवरी पॉसिबल हेल्प. प्लीज़ श्रोतागण जो भी सुन रहे हो, प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ. और शुजात खान साहब के शो में मैंने देखा था कि एटलीस्ट 15-20% ऑफ द अटेंडीज वर एक्चुअली पीपल ऑफ कॉकेशियन बैकग्राउंड, सो देयर इज अ फेयर बिट ऑफ इंटरेस्ट देयर एज वेल. सो आई नीड दैट. यस, देयर इज अ फाइनेंशियल चैलेंज एज वेल बिकॉज वेन वी टेक दिस प्लान वी आर नेवर श्योर कि वी आर गोइंग टू. देखिए ये हम आई एम नॉट डूइंग दिस टू मेक अ प्रॉफिट, बट whether we will be able to break even is also always a challenge.
1: Yes.
0: But that's all okay. I mean, even if agar jeb se thoda bahut paisa ja bhi raha hai, wo khushi jo hame aati hai, we cannot compare that with whatever money may have gone down.
1: Agreed. Aur mujhe aisa lagta hai ki hamare Sydney mein we have got a very large variety of audience aur wo music ko appreciate karte hain, kala ko appreciate karte hain, to meri aasha hai ki bahut sare log aapka karyakram dekhne ke liye aayenge wahan par.
0: Thank you.
1: एक मैं आपसे थोड़ा बहुत अब मेन प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं?
0: हाँ, तो ये सिडनी वाला प्रोग्राम 14 अगस्त को, वी एक्चुअली वांटेड टू टाइम इट विद इंडियन इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है वो UNSW के साइंस थिएटर में होगा. वी विल स्टार्ट एट 6 o'clock एंड वी आर लुकिंग एट रफली 90-120 minutes प्रोग्राम. और जोहेब विल बी ऑन द तबला विद पंडित जी.
1: ओके, तो आपने कहा ये साइंस थिएटर UNSW में होने वाला है और आपका पिछला कार्यक्रम भी UNSW में है
0: जी.
1: क्योंकि एक म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए एकॉस्टिक सेटअप होना काफ़ी ज़रूरी है एंड आई थिंक साइंस थिएटर इज प्रीटी गुड इन दैट टर्म्स नाउ.
0: मेनी पीपल व्हेन वी स्टार्टेड मेनी पीपल एक्चुअली सेड कि Indian classical music के लिए apparently the Science Theatre UNSW is, they feel that it is even better than some of the bigger places in Opera House. So that was predominantly the reason we opted for this venue.
1: मैं agree करता हूँ. Science Theatre में हमारे यहाँ पे भी मराठी के काफ़ी नाटक और म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं और काफ़ी लोग आते हैं. Setup is quite appreciative. Okay, आप इस प्रोग्राम के बारे में और कोई डिटेल्स श्रोताओं से सादर करना चाहेंगे?
0: Please इस शो को प्लीज़ एनकरेज अस टू कीप डूइंग दिस बाई योर प्रेजेंस. एंड आई मट ऑल्सो से 15 अगस्त को वी हैव गॉट दिस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. इफ़ यू गूगल आई थिंक यू शुड बी एबल टू फाइंड विद इंडियन डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड दैट प्लीज़ फील फ्री टू रजिस्टर एंड कम इन. वहाँ पर शायद आपको राकेश जी के साथ बैठ के बात करने का अवसर भी मिलेगा. बट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द 14th शो इन सिडनी, द 15th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन सिडनी जहाँ राकेश जी विल कम एज अ चीफ गेस्ट, एंड अगेन 16th वी हैव गॉट द शो इन मेलबर्न. सो वेरी कीनली वेरी एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट.
1: बहुत बढ़िया. सुरजीत जी एक गाना सुनते हैं, राकेश जी के बांसुरी वादन फिर से सुनते हैं, उसके बाद में फिर आपसे कुछ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा.
0: बिल्कुल. थैंक यू.

0: डॉक्टर सुजीत, आपसे एक एक और चीज़ पूछना था। अगर कोई हमारे श्रोताओं में टिकट बुक करना चाहे इस कार्यक्रम के लिए, आपने बताया कि 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होने वाला है सांस थिएटर में, अगर कोई टिकट बुक करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं?
1: आई थिंक यू कैन टाइप इन राकेश चौरसिया इन सिडनी, या अगर आप मेलबर्न में हैं तो राकेश चौरसिया इन मेलबर्न शो। और ये प्रीमियर टिकट्स के थ्रू हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो गो इन टू प्रीमियर टिकट्स वेबसाइट एंड यू शुड बी एबल टू ट्रैक इट।
0: ओके, परफेक्ट। एक और अंत में मुझे आपसे कुछ एक दो सवाल करने हैं। आप अगर हमारे श्रोताओं को आखिरी संदेश देना चाहें इस कार्यक्रम के लिए, पंडित जी के लिए, तो वो क्या संदेश होगा?
1: देखिए, ये कुछ शब्दों में इसको समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि रोज़ की भागदौड़ की ज़िंदगी में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये अच्छा नहीं लग रहा, कभी वो अच्छा नहीं लग रहा, कभी इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, कभी उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ये शोज़ करते हैं, एक तो उसको अरेंज करने का आनंद, कम्युनिकेटिंग विद राकेश जी, इट हैज़ बीन सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने 5-6 बार उनसे बात किया है, हर बार ऐसा लगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाइड कर रहे हैं। कहीं पे कोई मुश्किल नहीं आया। मतलब उन्हें मालूम था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल पीपल, बट ही हेल्ड आवर हैंड्स, माई हैंड एंड माई वाइफ्स हैंड, एंड ही गाइडेड अस थ्रू इट ऑल। तो एक तो वो पार्ट है कि अपना जो मुझे सुकून मिलता है ये करते हुए। फिर जब इन शोज़ में बैठते हैं, वो जो मैंने आपको पहले कहा, वो 2-3 घंटा, इट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अ वार्म वर्ल्ड ऑफ कामनेस, ऑफ सेरेनिटी, ऑफ नोइंग दैट ज़िंदगी खूबसूरत है भाई। ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट जस्ट मारपीट वाली फिल्में या पॉलिटिशंस की मक्कारी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेंटलनेस इन आवर लाइफ्स, और एट द सेम टाइम इट गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रैक्ट विद सो मेनी पीपल। बहुत सारे, कुछ नाम मैं फटाफट लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं, कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर प्रशून हैं जो मेरे बंगाली पड़ोसी भी हैं, वी लिव इन द ब्लू माउंटेन्स, प्रशून दत्ता, डॉक्टर राजीव रॉय, फिर तौफीक एंड श्वेता भाभी। तौफीक का आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्रोग्राम्स एमसी करते हुए, विशेषदा मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया। शेखर मेनन है ही जो सरवणा भवन के, ही इज़ अ मैन बिहाइंड सरवणा भवन, ही इज़ बिन ह्यूज पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर अस। सो जस्ट बीइंग एबल टू टू टू इंट्रैक्ट विद ऑल दिस पीपल, टू मेक दिस इवेंट हैपन, इज सच ए वंडरफुल फीलिंग। एंड आई होप टू सी मोर एंड मोर ऑफ यू एट दिस इवेंट्स, एंड आई होप टू फील encouraged by seeing you smile, by seeing you being there. I hope to feel strong enough to do more and more of this without any fear in my heart.
0: बहुत अच्छा संदेश दिया कि मतलब अगर आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में उत्सुक हैं और आप इससे संतोष और आनंद ले रहे हैं, तो आई एम श्योर जो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले पंडित जी जो यहाँ आएंगे और जो भी श्रोतागण, जो भी दर्शक वहाँ जाएंगे, वो भी इस कार्यक्रम से काफ़ी आनंद उनको मिलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके संदेश से। और बांसुरी वादन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सही में जैसा बार बार आपने कहा आज, एंड आई कुड सी दैट, आई कुड सेंस दैट, और जब हमने ये म्यूज़िक बजाया पंडित जी का, हर बार इट हैज़ जस्ट स्लोइंग डाउन, इट हैज़ बीन स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ वट एवर वी आर डूइंग, और एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा है, जिससे शायद हम जो रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ परेशानी है, कुछ ना कुछ होता है और भाग दौड़ रहती है, अगर परेशानी नहीं भी है, हमारा माइंड यूजुअली एक एक जगह पे रुक नहीं पाता है, बट कुछ देर के लिए वो सुनने के बाद भी, उसकी क्लिप सुनने के बाद भी, देर हैज़ बिन इनफ काम। सो आई एम श्योर कि जब वो 2 घंटे के लिए आप उनको लाइव देखेंगे और लाइव सुनेंगे, इट विल हैव अ बिग बिग इम्पैक्ट। मुझे और भी, अगर पंडित जी यहाँ रुकते तो मैं आपसे अनुरोध करता कि उन्हें कुछ वर्कशॉप लेने के लिए भी आप कहते हैं, हमारे यहाँ शायद कुछ लोग उसको सुनने उन्हें सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए भी उत्सुक रहते हैं, तो अगली बार जब वो आए तो पक्का उन्हें इसके लिए भी आप उनसे रिक्वेस्ट
1: दैट्स अ ग्रेट आइडिया,
0: कीजिए।
1: आई वुड शुड हैव, या वी विल थिंक अबाउट दैट ऑफ कोर्स, या।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरजीत जी। आप आज स्टूडियो में आए, आपने आपके कार्यक्रम के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: विनीत भाई, मैंने कुछ लोगों को थैंक यू किया, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा थैंक यू मुझे आपको कहना चाहिए, बिकॉज 3 साल पहले जब हम लोगों ने पहला इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंडियन पैरेलल फिल्म फेस्टिवल किया था, जहाँ पे सत्यजीत रे साहब की फिल्में लेके आए थे, आप मुझे नहीं जानते थे, बट यू आर काइंड इनफ, यू आर ग्रेशियस इनफ टू ब्रिंग अस टू द स्टूडियो, और फिर शुजात खान साहब साहब के के टाइम में भी आपने हमें बड़ी मदद करी, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू विनीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर अस।
0: हमारा सौभाग्य। और अच्छे कार्यक्रम की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे श्रोताओं तक पहुँचे, जैसे मैंने मराठी में कहा था हमारे श्रोताओं को, आपको शायद समझा नहीं होगा, मैंने कहा था कि आप मैंने सबसे माफ़ी मांगी थी कि मैं आज का कार्यक्रम मराठी में नहीं कर पाऊँगा और हिंदी में बात करेंगे, पर मैंने उनसे ये भी कहा था कि संगीत की कोई भाषा नहीं है और संगीत किसी भी भाषा से मर्यादित भी नहीं है। तो उसी तरीके से आप जो कार्यक्रम ला रहे हैं, देर विल बी ऑडियंस ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड बट अक्रॉस। आपने कहा काफ़ी सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग भी वहाँ पर आए थे लास्ट टाइम, तो आई एम श्योर कि इस बार भी अलग अलग यू नो बैकग्राउंड के लोग, एथनिक बैकग्राउंड के लोग वहाँ पर आएंगे। मैं आपको आकाशवाणी सिडनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपको वहाँ कार्यक्रम पे हम लोग सब मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई।
0: थैंक यू डॉक्टर सुरजीत।
1: थैंक यू।
0: श्रोते हो आता अपन ऐकूया सिडनी डायरी सादर करणार वैभव।

0: मतलब बृहस्पति का रह लेकिन अतः वो इंडिया नो अमात्य वरु दिन ने मोड़ी के अमात्य वरु दिन ने समक सागर चागरा ओबन में का प्रश्न विज़ा करने के लिए तो उन दरना उन में का संपूर्ण आवश्यक रहे यानि बै किसी से उन जब किसी प्रमाणे कटा में मेहुमा इतने के नल्ला मां इधर ना उन उत्साह करा या अलग जेडी पार्लिमेंट पार्लिमेंट तो जनवरी
1: विश्वास
0: अंतिम कैलकुलेशन अमेरिका फेब्रुवारी जुलाई मासे अवसन सत्य अमेरिका प्रहार वर्ट प्रतिबुद्ध प्रहार इराने तमामत वहां मेल कर देना इतिंग जनमाध्य सा विशेष समाज माध्य तुल पमनक विश्वास कर मीन तीन तीन तक जानने का मंगी जानने एक अर्थ हो जाने तब उदाहरण एक दुनिया के दंग वेनेजुएला में तत्व जन कल्पना कर ला लोग हितु अत्यावश्यक वेनेजुएला में
2: फेसबुक පිටුව ලයික් කිරීමෙන් අපට සහයෝගය දක්වන මෙන් අප ඉතා ඕනෑකමින් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එසේනම් ලබන සතියේ සභාගාරයේ වැඩසටහනකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඔබට සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.
3: FM 98.5 www.radio2000.com.au
4: दिन गणना पूरा भारत एविलू करपत्ता विरोधता अवसन इंडिया अध्यापन एमती धर्मेंद्र इल्ला अस्वे सेसु इल्ली मलटत राज्य एकंगु बव विरोधता करवन कियाई वत्तल वेडितबी में वेडिकरु सह मोटराथे रियदुरु बवट सक देदेने इंडियावे धनुष्कोडी हिदी अत्तनंगुवट वेडितबु दाट पसुदा अलुयम मन्नारमिन गोट्टुवकट गोडवी इंडियावट एविद देमट गोडदी महदवल पन्न पन्ना वेडितबु वेडिकरुत ओहुम बवट सकया वराय नगरे दी पहरगिन गोस घातने कल चीन जातिक्या चीने माफिया कल्यक प्रधान सामाजिके एरटेन आ तवत माफिया कल्यक सामाजिके इन पिरसक घातने सिदु कर एतै पोलिसिय सक कराई नीतिज्ञ संगम सभापति गेन क्यू कतावट मंत्री निरोशनट पार्श्व रसकिन दोषारोपण मंत्री वरप्रसाद मत मेति सभे क्यू दे एलियट वित कियन्नै अभियोगयक
5: असित निरोशन महात्म्यट अपि कियनवा पुलुवन नं ए कतावे एविल्ला एलिय कियन
6: अपे वर्दी पेन्नेनकोट नीति संगमे होंदै अपे यालगे वर्दी पेन्नेनकोट ए नीति संगमे तोरु
7: मे तर्कयक नेतु कता दर कता कियन्न एपा मंत्रीतुमा
4: वी वगाकल भूमि वल बड़ इरिंगु वावने बावटे कृषि एमति लालगेन प्रकाश्यक
8: अपे बलापुरुत्तु अपने वी वगाकरन भूमिया तावत वैडिकर रहेने वैडिकर रहेने